सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत लव इन शिमला फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। इकबाल कुरैशी का संगीत था, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। साथियों भोर सुहानी हो गई है, सुनहरा प्रभात आ गया है, आइए हम सब जागें, अपने अपने कार्य अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।

अनूप चुलुडो की आवाज से सजी अभी आपने ये रचना सुनी। साथियों, प्रभात सुनहरा आ गया है, भोर सुहानी का उदय हो चुका है और हम भी रंग जाते हैं ईश भजन में।

यशुदास और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत अपने पराए। इस फिल्म से अभी आपने सुना 1980 रिलीज ये फिल्म, बप्पी लहरे का संगीत, योगेश की लिखी रचना। साथियों भोर सुहानी हो गई है, हम सभी बस उठ रहे हैं, उठ गए हैं अपने अपने कार्यों की ओर चलते हुए। उन्हीं में से एक ये भी इस गर्मी में ठंडक बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं, क्या लाए हैं, सुनते हैं इस गीत रचना में।

जी हाँ, क्या ले जाएगा, सिर्फ व्यवहार ही, हमारा कर्म ही साथ रह जाएगा। मोहम्मद रफी की आवाज से सजाइए गीत माया फिल्म से अभी आपने सुना, 1961 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत सज रहा है दिल लगी फिल्म से, सुरैया की आवाज से सजा।

दिल लगी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। 1949 रिलीज ये फिल्म, सुरैया की आवाज़, नौशाद का संगीत, शकील बदायूं ने की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त है।

0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 నిలయంలో సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్దిసేపట్లో న్యూస్ హెడ్లైన్స్ వింటారు. వైష్ణవి, भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की. बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की. इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की. साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया. सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा. इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है. यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं. इनमें नवी

करणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। NTA ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। CBI वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Welcome back, listeners. You are listening to Akashwani 101.9 FM Rainbow. तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं शरीर के उस हिस्से के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. जी हाँ, वो है हमारी ब्रेन. क्योंकि आज 8 जून हो तो उस दिन में आज का दिन 8 जून है तो इस दिन हम मनाया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स डे. तो आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ा ही सकते हैं. दोस्तों, हमारा ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है. हम सोचते हैं, याद करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, इमोशंस फील करते हैं, सब कुछ ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल है. आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ, डेली लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेमोरी पावर और हेल्दी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे. तो साथ ही सुनेंगे कुछ इंस्पायरिंग सॉन्ग्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. तो शुरू करते हैं एक खूबसूरत गाने के साथ.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM. दोस्तों, सबके पास एक ही शिकायत है, वो है टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए, टाइम नहीं है हेल्दी खाने के लिए, और कभी कभी तो अपने लिए भी टाइम नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर हम अपनी सेहत के लिए आज थोड़ा सा वक्त नहीं निकालेंगे तो कल बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा वक्त निकालना पड़ेगा। दोस्तों, सक्सेस, पैसा, प्रमोशन और अचीवमेंट्स सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हेल्थ साथ ना दे तो इन सब का मज़ा अधूरा रह जाता है। आजकल लाइफस्टाइल्स डिजीजेस जैसे डायबिटीज, बीपी, ऑब्सेसिटी और स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है, और हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ बुजुर्गों में नहीं बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। हेल्दी रहना मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता है, हेल्दी रहना मतलब अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना। तो हाँ, हम सुन रहे हैं ये खूबसूरत गाना।

तो दोस्तों, वो था खूबसूरत गाना। जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्रेन ट्यूमर डे के बारे में, दोस्तों सोचिए जरा, एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है और डॉक्टर्स ब्रेन ट्यूमर रिमूव कर रहे हैं और सामने टीवी स्क्रीन पर चल रहा है उनकी फेवरेट मूवी। जी हाँ, ये कोई सीन नहीं है बल्कि आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक सच्चाई है। दोस्तों, इस टेक्निक को अवेक ब्रेन सर्जरी या अवेक क्रैनियोटमी कहा जाता है। इस सर्जरी में पेशेंट को पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता। सर्जरी के एक खास फेज में पेशेंट होश में रहता है और डॉक्टर उसे बात करते रहते हैं। रीसेंट सर्जरीज में आंध्र प्रदेश के हॉस्पिटल्स ने भी टेक्निक का सफल इस्तेमाल किया है। जी हाँ, गुंटूर के डीबीसी हॉस्पिटल में एक महिला पेशेंट की अवेक ब्रेन सर्जरी के दौरान उनकी फेवरेट तेलुगु फिल्म ओजी चलाई गई थी। ये तो काफी खूबसूरत और बेहतरीन बात है ना? तो चलिए इसी जज्बे को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं और एक गाना।

0: FM Rainbow 101.9, musically yours.
1: Welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9 FM Akashvani Hyderabad. तो हाँ, अब बात करते हैं उन आदतों की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है. सबसे पहला है, सुबह का नाश्ता कभी स्किप मत कीजिएगा. ब्रेकफास्ट हमारे शरीर को दिन भर के लिए एनर्जी देता है. और हर एक घंटे के बाद थोड़ा चल लीजिए. अगर ऑफिस में काम करते हैं तो 2-3 मिनट के वॉक जरूर लीजिए. पानी ज़्यादा पीजिए. कई बार हमें लगता है कि भूख लगी है, जबकि शरीर को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है. और एक और बात, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल कीजिए. छोटी सी आदत लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है. दोस्तों, जब हेल्थ की बात होती है तो हम सिर्फ फिजिकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन आज की लाइफ का हिस्सा बन चुका है. रोज़ 10 मिनट अपने लिए निकालिए. कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ म्यूजिक सुनते हैं, कुछ गार्डनिंग करते हैं और कुछ अपनी फेवरेट किताब पढ़ते हैं. जो भी आपको खुशी दे, उसके लिए रोज़ थोड़ा वक्त ज़रूर निकालिए. Let's dive into another musical track.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं 101.9 FM रेनबो आकाशवाणी 101.9। तो दोस्तों, आज जून 8 है और पूरी दुनिया मना रही है वर्ल्ड्स ओशन डे, यानी विश्व महासागर।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 1.1.9 एफएम। तो दोस्तों सोचिए, अगर समुंदर ना होते तो क्या होता? ना बारिश का चक्र पूरा होता, ना मौसम संतुलित रहता, ना ही अनेक प्रकार के जीव जंतु और पौधे मौजूद होते। समुंदर हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, ये गर्मी को अब्सॉर्ब करते हैं और पूरी दुनिया के तापमान को संतुलित रखने में मदद करते हैं। मछलियों और अन्य समुद्री जीवों पर लाखों लोगों की रोजी रोटी निर्भर करती है। भारत की बात करें तो हमारे पास लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन है जो कई राज्यों पर स्पर्श करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगला गाने के बाद।
1: లోపాలు సరిదిద్దే వ్యవస్థ, 40 ఏళ్ల అనుభవం చెప్పే పాఠం, గురి తప్పని ప్రోగ్రాముల బలం, అన్ని ఒక్క శ్రీ చైతన్య

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 एफएम रेनबो। रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन। तो दोस्तों, समुंदर की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया बसती है जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। कोरल रीफ्स को समुंदर के रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ब्लू व्हेल को धरती के सबसे बड़ा जीव है। समुंदर में रहता है डॉल्फिन्स, शार्क, ऐसे कई सारे जीवों। सी टर्टल्स हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर वही लौट आते हैं जहां उनका जन्म हुआ था। साइंटिस्ट का मानना है कि समुंदर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया है। दोस्तों, जितने समुंदर और महत्वपूर्ण समुंदर में उतनी ही गंभीर चेतावनियों भी है। प्लास्टिक पोल्यूशन सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर साल लाखों लोग प्लास्टिक समुद्रों में पहुंच जाते हैं

प्लास्टिक मछलियों, पक्षियों के लिए, जनजीवनों के लिए काफी ज्यादा खतरा है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो चलिए सुनते हैं एक अगला गाना।

Welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9 FM. The time is passing by 11:41 in the studio clock. So listeners, World Oceans Day हमें याद दिलाता है कि समुद्र सिर्फ प्रकृति का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे भविष्य का भी हिस्सा है. जिस तरह हम अपने घर को साफ और सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह हमें अपनी धरती को समुद्रों की भी रक्षा करनी चाहिए. आज एक संकल्प लेते हैं कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और समुद्रों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने में योगदान देंगे. याद रखिए, समुद्र बचाएंगे तभी भविष्य सुरक्षित रहेगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगली सुपरहिट गाने की तरफ.

0: FM Rainbow 101.9 Musically yours.
1: Welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9. तो दोस्तों, आज बात करते हैं सुपर एलनिनो की, जब पैसिफिक ओशन का पानी सामान्य से काफी ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसे एलनिनो कहा जाता है, और जब ये स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत हो तो उसे आमतौर पर सुपर एलनिनो कहा जाता है। इसका असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित करता है। दोस्तों, सुपर एलनिनो का प्रभाव भारत के मॉनसून पर भी पड़ सकता है। कई बार इसके कारण बारिश कम हो सकती है जिससे खेती और पानी की उपलब्धता प्रभावित हो सकता है। कुछ इलाकों में गर्मी भी ज्यादा महसूस होती है, इसलिए वैज्ञानिक इसकी स्थिति पर लगातार नजर रखते हैं। तो चलिए इसी सिलसिले को जारी रखते हैं इस गाने के बाद।

0: की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाश।

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो। रेनबो के साथ जीवन रंगीन है। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं सुपर एलिनो के बारे में। भारत में एलिनो का संबंध मौसम से जुड़ा होता है। कई बार एलिनो के दौरान मौसम कमज़ोर पड़ सकता है, जिससे कृषि पर असर पड़ता है। कम बारिश का मतलब है पानी की कमी। लेकिन याद रखिए, हर एलिनो एक जैसा नहीं होता है। मौसम पर इसका प्रभाव कई अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। कहीं हीट वेव्स बढ़ जाती है तो कहीं जंगल की आग का खतरा बढ़ जाता है। समुद्री जीव जंतु और मछलियों की प्रगतियों पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि समुद्र का तापमान और पोषक तत्वों को संतुलन बढ़ाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस छोटे से गाने के बाद।

101.9. Well, welcome back listeners. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो. नमस्ते, हेलो, आदाब. के इस सेगमेंट में हम बात कर रहे थे सुपर एलनीनो के बारे में. कुछ पूर्वानुमान इसे बहुत शक्तिशाली या सुपर एलनीनो के स्तर तक पहुंचने की संभावना भी बता रहे हैं. एलनीनो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति से छोटे से बदलाव भी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है. पानी बचाना, पर्यावरण का ध्यान रखना और मौसम से जुड़ी जानकारियों पर नज़र रखना हम सब की जिम्मेदारी है. जितना हम प्रकृति को समझेंगे उतना ही बेहतर भविष्य बना सकते हैं. इसी संदेश के साथ चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत. बने रहिए हमारे साथ.

0: Welcome back, listeners. You are listening to Akashvani 101.9 FM Rainbow. Rainbow के साथ लाइफ है रंगीन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. बॉलीवुड ने हमें ऐसे डांस नंबर्स दिए हैं जो जनरेशन दर जनरेशन लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं. चाहे शादी हो या फैमिली फंक्शन, कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते. दोस्तों, 2000s और उसके बाद बॉलीवुड म्यूजिक में आई हाई एनर्जी बीट्स ने पार्टी कल्चर को एक नई पहचान दी. इन गानों के बिना डीजे प्लेलिस्ट अधूरी लगती है. तो चलिए ऐसे ही बॉलीवुड गीत को सुनते हैं.
1: King Khan, yo, honey singer.

0: Rainbow 101.9.
1: Welcome back, listeners. Welcome back. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो. रेनबो के साथ लाइफ है रंगीन. तो आज के दौर में बॉलीवुड सॉन्ग्स सिर्फ रेडियो और टीवी तक सीमित नहीं है. रील्स, शॉर्ट्स और सोशल मीडिया ने कई गानों को ग्लोबल सेंसेशन बना दिया है. और अब वक्त है एनर्जी को डबल करने का, क्योंकि अगला गाना पार्टी मूड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा. सुनते रहिए आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो। टाइम इज पासिंग बाय 12:57 इन द स्टूडियो क्लॉक, और ढेर सारी बातें और इंस्पिरेशन सीख भी लिए, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में, बिजी लाइफ्स में हेल्थी टिप्स के बारे में, और समुंदर का इम्पोर्टेंस और कैसे सुपर एलिनो हम पर इफेक्ट करेगा, एंड लॉट्स ऑफ बॉलीवुड बीट्स के साथ आज का नमस्ते हेलो आदाब सेगमेंट खत्म होता है, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हेलो रेनबो। तो आज का हेलो रेनबो का टॉपिक है कि आपने अपनी समर वेकेशंस को कैसे स्पेंड किया है, अपने बच्चों के साथ, अपना दादा दादी, नाना नानी और ढेर सारी रिलेटिव्स के साथ आज आपने कैसे अपनी समर वेकेशन को सेलिब्रेट किया है। ये बताने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0402323-0030, 0402323-4821, 0402970-4715 पर। तो चलिए सुनते हैं एक अगला गाना।

Well, welcome back, listeners. You are listening to FM Rainbow 101.9 FM. Hello, Rainbow का वक्त हो चुका है और हमसे हमारा पहला कॉलर जुड़ने के लिए तैयार है. हेलो हेलो तो चलिए सुनते हैं हमारा अगला गाना.

0: वेलकम बैक लिसनर्स। हेलो रेनबो का वक्त हो चुका है और आज का टॉपिक है समर वेकेशन में आपने कैसे एंजॉय किया है, आपने कैसे स्पेंड किया है। तो हमारी पहली कॉलर तैयार है। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब मैडम जी।
0: गुड आफ्टरनून। जी बताइए, आपने
1: जी
0: समर
1: जी शेर
0: वेकेशन
1: खान बोल रहा
0: कैसे
1: हूँ,
0: एंजॉय
1: कलाकट
0: किया
1: का
0: है?
1: अमल नगर से। पहले
0: जी
1: सभी भाई बहनों को, दोस्तों को, सुनने वालों को और आपको मेरा प्यार भरा सलाम आदाब है। और
0: जी
1: अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सभी को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे।
0: जी बहुत अच्छी बात है।
1: जी मैडम, मैं आपको बता दूं, मैं ब्लाइंड हूं तो ज्यादा तो मैं कहाँ जा नहीं सका, लेकिन 2 ढाई महीने पहले अपने गांव जरूर गया था, महाराष्ट्र में
0: जी
1: पुसद नाम का गांव है, तो वहाँ रमजान के लिए गया था मैं। तो हमारे गांव में बहुत इंजॉय हुआ, बहुत मतलब ज्यादा तो मस्जिद में ही वक्त बीतता था, इबादत करने में, नमाज में और दुआ करने में। फिर
0: जी
1: उसके बाद आ गए तो अभी जब से तो कहाँ गए नहीं, लेकिन कल मैं गया था अपने, हमारे जो महजबिन बाजी है उनके वहाँ गया था और उन्होंने अमेरिका जाके आए और मेरे लिए उन्होंने एक अमेरिकन टॉकिंग वॉच लाए, बहुत बेहतरीन गिफ्ट लाए। उनकी बेटी सादिया है जो हमारी भांजी है,
0: जी
1: उन्होंने
0: जी
1: हमारे लिए ये तोहफा भेजा है बेहतरीन, तो
0: जी
1: बहुत खुशी हुई। ये उनके वहाँ जाने को भी मिला कल, थोड़ा बैठ के बातचीत मुलाकात हुई। हमारे लिए तो यही वेकेशन होता है कि कहीं थोड़ा भी जाने को

0: जाए, कहीं लेके कोई चला जाए, या किसी से बातचीत हो जाए, दुआ सलाम हो जाए, यही
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: बड़ा वोकेशन होता है। तो मैं जमीन
1: जी
0: बाजी को भी सलाम है, मुमताज़ बाजी को भी सलाम है, और मोहम्मद अफजल साहब को भी शुक्रिया कहूँगा। उन्होंने जो कोशिश में है, मैं भी वही कोशिश में हूँ, लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी ना कभी बातचीत हो ही जाएंगी।
1: जी धन्यवाद, आपका राय शेयर
0: जी
1: करने के लिए धन्यवाद
0: ओके शुक्रिया।
1: जी। तो बाकी सब आप सब भी समर वेकेशन के बारे में हमसे जुड़ सकते हैं 0402323 00300, 0402323 4821, 0402970 4715 पर। सुनते रहें आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 मेगाहर्ट्स एफएम रेनबो पर। सामान्य स्टोरी की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 हो रहे हैं। आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं और अब वक्त हुआ है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM रेनबो मेगा हर्ट्स पर। उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज़ में सामाइन का दिली खैर मकदम है। सामाइन, आप तमाम की खिदमत में हमारा पुरखलोस सलाम। सामाइन, आज की इस बज़ को हमने सजाया है हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी मोहतरमा नूर अफशां की, और बज़्म नज़्म के तहत आप समाप्त करेंगे नज़में अमान अली साकिब से, और गीत सुरीले गाते जा इसके तहत आप बहुत ही सुरीले नगमे समाप्त कर सकेंगे। इसके अलावा बज़्म के आखिर में पयाम शब, जिसे नदीम अख्तर ज़ैदी पेश करेंगे। हाँ, और एक बात मैंने और आप जैसे कि जानते हैं कि रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी हैदराबाद, आकाशवाणी दिल्ली, ये कायम हुए 90 साल हुए हैं आज ही के दिन, यानी 8 जून 1936 में ये जो रवा था सिलसिला, और अब तक 90 साल हो चुके हैं और रवा हैं और आगे भी रवा दवा रहेगा। तो इस पर मैं कुछ मालूमात आप तक पहुंचाऊंगी। फिलहाल सामिने कराम, नारंग प्रोग्राम की बज़्म का हम आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश है मोहतरमा नूर अफशां की, आइए सुने।
1: कभी एक लम्हे को आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि आप दुनिया में अकेले हों। माँ की गोद ना हो, बाप का साया ना हो, कोई आवाज़ ना हो जो आपको कहे कि बेटा फिक्र ना करो, मैं हूं ना। ऐसा एहसास दिल को हिला कर रख देता है, और यही एहसास हर उस बच्चे का होता है जो यतीम है, जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, और दुनिया की सख्तियों का सामना अकेले करना सीख रहा है। हमारे माशरे में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता। अगर हम सब अपने आसपास देखें तो कहीं ना कहीं कोई यतीम जरूर मिलेगा जो हमारी मदद का मुंतजर होगा। यतीमों की मदद करना सिर्फ पैसा देना ही नहीं होता, बल्कि उन्हें वक्त देना, प्यार देना, तालीम देना और उनका हाथ थामना उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। यतीम के आंसू पोंछना इंसानियत की वो खिदमत है जिसका बदला जन्नत है। हम सबको चाहिए कि नन्हे फूलों को मुरझाने न दें, बल्कि उनके लिए धूप में साया बने। यतीमों की मदद सिर्फ नेकी नहीं बल्कि इबादत है। कभी किसी यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चों से लाड़ प्यार ना जताना चाहिए, क्योंकि ये देखकर उनके मासूम दिल को ठेस पहुंचती है कि काश हमारे भी माँ बाप होते तो हमें ऐसे ही प्यार करते। ये एहसास कमतरी का शिकार होने लगते हैं। उन बच्चों को हमेशा कोई अपनेपन की ज़रूरत होती है, और खुशियाँ हमेशा बांटने से बढ़ती है। और अगर हम अपने बच्चों में खुशियाँ बांटेंगे, ख़ास तौर पर यतीम बच्चों में अगर खुशियाँ बांटेंगे, तो वो खुशियाँ और भी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यतीम बच्चों को खाना खिलाना ही मदद नहीं होती, बल्कि उनको प्यार मोहब्बत देना, उनकी परेशानियों के बारे में जानना, उनको दुख के वक्त साथ देना, उनकी बातों को तवज्जो से सुनना, और किसी वजह से अगर वो परेशान हों तो उसका हल निकालना और उनका साथ देना, ये सब चीज़ें बहुत ही अहम होती हैं। ये सब चीज़ें एहसास से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि बच्चे जो यतीम हो जाते हैं वो, यानी उनसे कोई इतना क्लोज़ नहीं होता, उनका कोई इतना ख़ास नहीं होता कि वो अपनी दिल की बात बता सकें किसी को, उनकी परेशानी किसी के सामने ज़ाहिर कर सकें। तो हम अगर मिलें किसी से, हम अगर किसी के साथ हों, तो समझिए कि वो हमारी खुशकिस्मती है, और हम यानी उनके एहसास को समझें, उनकी परेशानियों को समझें, और उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा कोई नहीं है। वो बहुत खुश हो जाएंगे कि उन्हें जब समझ में आएगा, उन्हें ये एहसास होगा कि उनका भी कोई है जो उनके हर सुख दुख में साथ देगा, कोई उनका अपना है। तो यही अपनेपन का एहसास दिलाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये सब काम अहम होते हैं जो यतीम बच्चों के लिए हमें करना चाहिए, जिससे उनको कभी अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो और उन्हें अपनेपन का एहसास होता रहे।
0: अपनेपन का एहसास, ये था हरफ ताबिंदा जिसे पेश कर रही थी मोहतरमा नूर अफशां। यकीनन

0: मौजूदा दौर में जहां हम देख रहे हैं कि एक तो बहुत से लोग लावलद हैं और कहीं अल्लाह सुबहाना ताला ने, अगर भगवान ईश्वर अल्लाह ने औलाद दी है किसी को, और उन जैसे जन्नत या हेवन जिसको हम कहेंगे, उससे अगर किसी की गोद भर देता है, तो फिर ऐसा भी हो जाता है कि वो जो फूल बाग में खिलता है और फिर वो बाग से महरूम हो जाता है जब वालिदैन का सर से साया उड़ जाए, तो यकीनन वो महरूमी की ज़िंदगी में चले जाते हैं और यतीम कहलाते हैं। तो ये सही बात है कि ये सच है, हम इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि हम यतीम और लावारिस यसीर बेआसरा बच्चों के सामने अपने जो बच्चे होते हैं, अपनी जो औलाद होती है, उसको उतनी मोहब्बत खुलूस ना दिखाएं ताकि वो जो सामने वाला है यतीम और लावारिस वो कमतरी महसूस करे और अपने आप को कम समझे। तो हरफ ताबिंदा आपने अभी समाप्त किया। सामिन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और वक्त हुआ इस ऑल इंडिया रेडियो के इस स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:37 और 11 सेकेंड्स। और अब समाप्त करते हैं बज़्म नज़्म इस सिलसिले के तहत जनाब अमान अली साकिब से नज़में। आइए।
1: मोहतरम, आज के प्रोग्राम में मैं इल्म की फजीलत और ज़रूरत और तालीम निस्वान की अहमियत के एहसासात को उजागर करने वाले अशार आपकी समाअत के लिए पेश कर रहा हूँ। समाअत फरमाइए इल्म की अहमियत पर। इल्म इंसानियत की ज़रूरत भी है, ये निशात व मसर्रत की शरबत भी है। इल्म ही तर्जुमान मशीयत भी है, इसकी तहसील बेशक इबादत भी है, इसकी तहसील बेशक इबादत भी है। इल्म ही जिंदगी का असासा है वो, इल्म ही जिंदगी का असासा है वो, जिसमें कुव्वत हरारत करामत भी है, जिसमें कुव्वत हरारत करामत भी है। रज्म और बज्म की रोशनी आबरू, गोद में इसके साइंस और हिकमत भी है, गोद में इसके साइंस और हिकमत भी है। ये शराफत शुजात अदालत की जान, इसके दामन में पलती सियासत भी है। इसके बेटे हैं सब शायर व फलसफी, बेटियों में तो साइंस व हिकमत भी है। इल्म का शहर है सरवरे दो जहां, बाब इस शहर का मौला हजरत भी हैं। अपने हामिल को करता है ये सुर्ख रू, इसमें तौखीर व अजमत शराफत भी है। इसकी तासीर मुश्किल कुशाई का फन, इसकी तनवीर हुसने फिरासत भी है। इसका खादिम है नोमान और बू अली, इसकी दासी फसाहत बलागत भी है। दूर दूर इससे रहती हैं सब तलखियाँ, इसमें शीरीनी है और हलावत भी है। इससे आदम को अजमत मलक पर मिली, इसमें तामीर भी है करामत भी है। दौलत इल्म जिस मुल्क को मिल गई, उसको दुनिया की हासिल खियादत भी है। मोतरिफ इसकी तारीख आलम भी है। इसकी मोहताज हर एक मिल्लत भी है। शेर ख्वाब गफलत से बेदार करता है ये। इल्म का वलवला एक रहमत भी है। हैदराबाद को जगमगाता है ये। सारी दुनिया में अब इसकी शोहरत भी है। इल्म सेहत व तंजीम और इत्तेहाद, इन्हीं अरबा अनासिर में इज्जत भी है। अपना पैगाम साखिब सुनाता है ये अब जमाने को जिस

की ज़रूरत भी है, अब ज़माने को जिसकी ज़रूरत भी है। सामईन मोहतरम, इल्म की उमूमी अहमियत और ज़रूरत पर आप अशआर समाप्त फरमा चुके हैं। अब मैं मुनासिब ये समझता हूँ कि तबके निस्वान के लिए, ख़वातीन के लिए तालीम की कितनी अहमियत है और कितनी ज़रूरत है और कितनी कैसी फजीलत है, उस पर भी चंद शेर समाप्त फरमाइए आप। पहला शेर है, जिंदगी है एक गाड़ी जिसके पहिए मर्द जन, इनमें हर एक के लिए लाजिम है इल्म व फिक्र व फन। जिम्मेदारी मर्द से औरत की कम क्यों जानिए, दोनों के अपने तकाजे हैं यकीनन सोचिए। घर के बाहर घर के अंदर दो अहम शोबे हैं ये, एक ही मंजिल पे जाकर रास्ते मिलते हैं ये। अक्लो दानिश फहमो इदराक दोनों पर लाजिम है ये, जिंदगी के सब मसाइल के लिए नाजिम है ये। रोशनी अक्लो दानिश के लिए लाजिम है इल्म, नेमतों और बरकतों का बस वही कासिम है इल्म, यानी तकसीम करने वाला। नेमतों और बरकतों का बस वही कासिम है इल्म, इल्म रहमत, इल्म बरकत, इल्म नेमत, इल्म आन। जिंदगी है एक खालिब, इल्म ही है इसकी जान। जिंदगी है एक खालिब, इल्म ही है इसकी जान। इल्म राहत का वसीला, इल्म अजमत का विखार, रूह की वो रोशनी है इल्म दिल का है खरार। रूह की वो रोशनी है इल्म दिल का है खरार। इल्म की दौलत ही गोया कैफ आवर है सुरूर, जिंदगी की राह की तारीकियों में है वो नूर। इल्म एक दौलत है अपनी और वो भी लाजवाल, इल्म के आगे सवाली बनता है हुस्नो जमाल। इल्म से आसाइशे इंसान की तख्लीक है, इल्म ही में दुश्मनों पर फतह की तौफीक है। इल्म ही की गोद में पलती है साइंस और हयात, इल्म ही से कौम के खदमों को मिलता है सिबात। उतलुबुल इल्मी कहा पैगंबरे इस्लाम ने, उतलुबुल इल्म यानी तलब करो, इल्म हासिल करो। उतलुबुल इल्मी कहा पैगंबरे इस्लाम ने, गरचे हासिल हो सकेगा वो दयारे चीन से। इल्म की तहसील औरत मर्द दोनों पर है फर्ज, इल्म की तहसील औरत मर्द दोनों पर है फर्ज। दूर हो जाता है जिससे जहलो नादानी का मर्ज, जिस तरह से मर्द पर लाजिम वो औरत पर भी है। जिस तरह से मर्द पर लाजिम वो औरत पर भी है, इंफरादियत पे लाजिम और जमात पर भी है। इल्म ही से राहतों की फूटती है रोशनी, शाद काम होती है इसके फैज ही से जिंदगी। चांदनी तालीम निस्वा जिंदगी की गुलसिता, देखकर इसको जमी पर मुस्कुराए कहकशां। हो अगर आगोश मादर इल्म से आरास्ता, इनके सब औलाद होगी अजमतों का आईना। ज़हने इंसान फिक्रे निस्वा में लताफत का है नूर, बेशुबा होता है रोशन इससे इंसानी शुऊर। नौए इंसानी की राहत फिक्रे निस्वानी में है, नौए इंसानी की राहत फिक्रे निस्वानी में है। रोशनी फिक्रे निस्वा इल्म सामानी में है, रोशनी फिक्रे निस्वा इल्म सामानी में है। इल्म शादा भी है इंसान, इल्म निस्वा की हयात, इल्म ही से नेमतों और बरकतों की है निशात यानी पैदाइश। इल्म निस्वा से ही रोशन होती है बज़्म हयात, इल्म निस्वा से ही रोशन होती है बज़्म हयात। इस्म इल्म निस्वा से निखर जाती है सरबस्ता सिफात, इल्म निस्वा से निखर जाती है सरबस्ता सिफात। इल्म निस्वा शाद मानी शाद कामी हयात, इल्म निस्वा खोलता है उखदहाए कायनात, इल्म निस्वा खोलता है उखदहाए कायनात। इल्म निस्वा से तरक्की पाती है साइंस भी, इल्म निस्वा से ही होती है मुनव्वर जिंदगी। इल्म का मैदान दोनों के लिए है एक सा, इल्म का मैदान दोनों के लिए है एक सा, इल्म का मैदान दोनों के लिए है गुलसिता। इल्म ही से ये जमीन होती है रश्के आसमां, इल्म की तस्खीर में है चांद तारे कहकशां। इल्म की तहसील दोनों के लिए है लाजमी, इल्म है दोनों का जेवर एक जैसा वाकई। मर्द औरत की हकीकत जानिए तो है यही, एक हरारत जिंदगी की और एक है रोशनी। मर्द औरत की हकीकत जानिए तो है यही, एक हरारत जिंदगी की और एक है रोशनी। जिंदगी के सारे शोबों पर है दोनों का असर, जिंदगी के सारे शोबों पर है दोनों का असर। इनकी कोशिश ही से नखले जिंदगी है बासमर।

ने लुत्फ़ उठाया होगा। किसी भी किस्म के प्रोग्राम्स आप ले लीजिए, चाहे यूथ के लिए हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए हो या फिर ख़वातीन के लिए हो या बुज़ुर्गों के लिए हो, हर एक मैदान में हर एक उम्र का लिहाज रखा गया, चाहे वो साइंसी तकारीर हो, साइंसी प्रोग्राम्स हो या फिर मौसीकी प्रोग्राम्स हो या फिर गीत हो, कई ऐसे किस्म के प्रोग्राम जो आप सुनते आ रहे हैं और सुनते रहेंगे। तो 8 जून 1936 इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बाज़ाब्ता तौर पर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। ये वो तारीख है जिसे आकाशवाणी इसकी पैदाइश के तौर पर शुमार करती है। 7 जून 1936 उस वक्त AIR के सरकारी मैगजीन द इंडियन लिसनर ने दुनिया के सामने नए नाम का ऐलान किया, और वो नए नाम का ऐलान दरअसल आज़ादी के बाद यानी AIR 1956 के बाद आकाशवाणी का नाम दिया गया या फिर AIR से आकाशवाणी का नाम अपनाया। ये आकाशवाणी की शुरुआत थी जो 8 जून 1936 से हुई थी।

सामिन, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की, जो कायम होकर अपनी 90 ईयर्स, 90 साल मुकम्मल कर चुका है। रेडियो हिंदुस्तान की अवामी खिदमत की नशरियात का एक अहम सुतून है मालूमाती, सकाफती, तालीमी और तरक्याती ज़रूरियात को पूरा करता है, और ये ज़रूरियात न्यूज़ सर्विस डिवीज़न आला पेशे वाराना मियारात पर अमल करते हुए तमाम बड़ी ज़ुबानों और बोलियों में हफ्ते के 7 दिन और

सात दिन के 24 घंटे फिल्म संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत रिपोर्टाज हालात हाजिरा ड्रामे नाटक खेलकूद वगैरह की खबरें फराहम करता है जो 23 जुबानों और 146 बोलियों में नशरियात करता है, या यूं कहें कि 23 जुबानों और 146 बोलियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स नशर करता है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न 100 से ज़्यादा ममालिक में नशरियात करता है। इस तरह हिंदुस्तान भर में 591 स्टेशन्स कायम हैं और जो हिंदुस्तान की

के 23 जुबानों और 146 बोलियों पर मुश्तमिल प्रोग्राम्स नशर करता है। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न 100 से ज़्यादा ममालिक में नशरियात करता है। इस तरह हिंदुस्तान भर में 591 स्टेशन्स कायम हैं, और जो हिंदुस्तान की 98% आबादी नशरियात से महजूज होती हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक फ़ख्र की ये बात है। अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान भर में 591 स्टेशन्स हैं और 98% आबादी रेडियो सुनती है और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होती है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामाई आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। सामाई ना हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो है कि जो अपने पूरे 90 साल मना रहा है। जैसे कि अभी मैंने कहा कि हिंदुस्तानी सुनने वाले मैगज़ीन ने सरकारी नाम तब्दील करने से एक दिन कबल यानी 7 जून 1936 को AIR का ऐलान किया। दिल्ली स्टेशन से आवाज़ों को पंख मिले और तारीख को माइक मिला। और सामिन, आकाशवाणी स्टेशनों ने मई और रवा माह, ये जो माह चल रहा है जून का, इस माह में हिंदुस्तान भर में तकरीबात मुनाकिद की, जिसमें जम्मू, जालंधर, पटियाला, रायपुर, अगरतला, गुजरात, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद वगैरह शामिल रहे। दिल्ली स्टेशन वो मरकज़ बन गया जहां आवाज़ों को पंख मिली और तारीख को माइक मिला। और जैसे ही तारीख को माइक मिला, यकीनन लिसनर्स और फिर एंकर्स जो है वो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन गए कुछ इस तरह।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामईन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। सामईन, इंसानी जिस्म या ना सिर्फ इंसानी बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जानदार जो होते हैं लिविंग थिंग, उनके जिस्म का सबसे अहम अज़ू हम कहेंगे कि आँख, जिसे सब कुछ देखा जा सकता है और महसूस किया जाता है, बल्कि आँख से ज़ाहिर बहुत सी यानी दिल में जो छुपा होता है वो राज भी आँखों से बयां हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जिक्र हो रहा है, सुनते हैं ये प्यारे से नगमे को।

ग़ुरबतें होते हुए भी फ़ासलों में क़ैद हैं, ग़ुरबतें होते हुए भी फ़ासलों में क़ैद हैं, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में क़ैद हैं, कितनी आज़ादी से हम अपनी हदों में क़ैद हैं। कौन सी आँखों में मेरे ख्वाब रोशन हैं अभी, कौन सी आँखों में मेरे ख्वाब रोशन हैं अभी, किसकी नींदे हैं जो मेरे रज्जगों में क़ैद हैं, किसकी नींदे हैं जो मेरे रज्जगों में क़ैद हैं। कौन ये पाताल से उभरा किनारे पर सलीम, कौन ये पाताल से उभरा किनारे पर सलीम, सर फिरी मौजें अभी तक दायरों में क़ैद हैं, सर फिरी मौजें अभी तक दायरों में क़ैद हैं।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर सामयीन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जा। अर्ज किया है शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे चलते हैं कि मर जाते हैं, इतने समझौतों पे चलते हैं कि मर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर ठहरे, हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर ठहरे, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाएं, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाएं। घर घर की गिरती हुई दीवार है हमसे अच्छी, घर की गिरती हुई दीवार है हमसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं, एक जुदाई का वो लम्हा कि जो मरता ही नहीं। लोग कहते थे

सभी वक्त गुजर जाते हैं। लोग कहते थे सभी वक्त गुजर जाते हैं। फिर वही तलीज हालात मुकद्दर ठहरी। नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं।

ये आकाशवाणी है जवाहदी 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामिन, आप समाप्त कर रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग और बज़्म सजी है गीत सुरीले गाते जाकी। और बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 10:48 और 26 सेकेंड्स हो रहे हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी। अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। क्यों ना चीखों के याद करते हैं, क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं। मेरी आवाज़ घर नहीं आती, मेरी आवाज़ घर नहीं आती। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती।

अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह का अपनों से, अजीब रिश्ता रहा कुछ इस तरह अपनों से, ना वजह मिली नफ़रतों की ना मोहब्बतों का सिला मिला, ना वजह मिली नफ़रतों की ना मोहब्बतों का सिला मिला।

सुरीले गाते जा। इसी गीत पर ये प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। ये आकाशवाणी हैदराबाद ही और 101.9 FM पर आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग। और अभी वक्त हमारे पास बाकी है, फिर से मैं आपकी याद दहानी कर दूं कि हमने पूरे 90 साल मनाए हैं और इंडिया रेडियो की क़ायम होने की। और जैसे कि आप जानते हैं कि आगाज़ पर मैंने बताया था कि 8 जून 1936 ऑल इंडिया रेडियो की आगाज़ की तारीख है, और हिंदुस्तानी सुनने वाले मैगज़ीन ने सरकारी नाम तब्दील करने से एक दिन पहले यानी एक दिन कबल 7 जून 1936 को AIR का ऐलान किया। और फिर 1956 में इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया। और फिर स्टेशनों से आवाज़ों का वो जो आवाज़ों

और फिर स्टेशनों से आवाज़ों का वो जो आवाज़ों को पंख मिली और तारीख को माइक मिला, इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और आज तक चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो और ये भी आप जानते हैं कि पूरी 23 ज़बानें और 146 बोलियां नशर की जाती हैं स्टेशनों से, मुख्तलिफ स्टेशनों से। तो सामिन, अब बज़्म के आगाज़ पर हम समाअत करते हैं पयाम-ए-शब, जिसे पेश कर रहे हैं नदीम अख्तर ज़ैदी। आइए सुने।

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। बेवफाई जिंदगी का एक कड़वा सच है, मगर ये हमें एक बड़ी सीख भी देती है। जो शख्स आपका ना हो सका, उसके लिए दिल को जलाने के बजाय खुद की कदर पहचानिए। याद रखें, सच्ची मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती, और जो दे जाए वो मोहब्बत नहीं सिर्फ एक आजमाइश होती है। अपने दिल को मजबूत बनाए, माजी को छोड़ दिए, और यकीन रखें कि अल्लाह बेहतर का वादा करता है।

0: राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: largely are still rainfed irrigation. So the government has been addressing this in multiple, including micro irrigation. And one of the things is per drop more crop, which is talking of micro irrigation drip. And this has been again going on for almost a little over 2 decades, because I remember way back in the year 2000 when Mr. Atal Bihari Vajpayee was the prime minister, he sent a mission under then I think Mr. Chandrababu Naidu to work on this. So it has been a constant work in progress that there. I think that one of the technological driven aspect is the Namo Drone DD, which is now using modern technology, as Mr. mentioned about ENAM, using the technology for market access. Now you're using the drone technology by training women to operate as a specialized, help them in modern farming, lowering the cost, because agriculture, we know, remains a labor-intensive sector. And increasingly, the hands get costly, because when you employ more people, obviously the farm cost goes. So government is mix and match kind of a thing, how to use technology and how to bring a better thing. So I think these are a couple of issues, but I also believe the larger aspect is the Agriculture Infrastructure Fund, which has a massive outlay to catalyze, the creation of post-harvest management infrastructure, cold chains, community farming. So these are still progresses, but these are sectoral reforms, I mean, reforms within the sector that the government is looking at the problems that have been affecting at this particular sector.
1: ओके मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं. जो मैंने अभी मिस्टर आनंद, मिस्टर प्रसाद से पूछा, वही प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से किसानों का सशक्तिकरण हुआ है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसका मजबूतीकरण हुआ है, जो हम देख रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी फिगर्स में, आप हमें बता सकते हैं कि कौन से आप ऐसे प्रमुख 2-3 इनिशिएटिव्स जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण आंकते हैं, जो उठाए गए हैं इस दौरान एग्रीकल्चरल पॉलिसी के डायरेक्शन में?
2: एक तो सबसे बड़ा मुझे लगता है जो 12 साल में सरकार ने उठाया था, वो है एमएसपी का फिक्सेशन। पहले एमएसपी का फिक्सेशन सारे फैक्टर्स को आधार करके लिया जाता था, जिसमें इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या है, उसमें इन्फ्लेशन कितना है, उसका डिमांड सप्लाई सब कुछ देखा जाता था। आज भी वही फैक्टर जरूर है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया 2018 में कि एमएसपी जो होगा वो मिनिमम 50% प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। और 2018 से पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जो लोग बताते थे कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा गवर्नमेंट फिक्स कर ही नहीं सकता, क्योंकि पूरा बोझ सरकार के ऊपर आएगा, सरकार को खरीदना पड़ेगा। लेकिन 2018 में जब लिया, आज देख लीजिए पॉसिबल है, सबके सामने 8 साल हो गया, सरकार हर साल मिनिमम 50% एंश्योर करके एमएसपी डिक्लेयर कर रही है। शुरुआत में जरूर जो मार्केट प्राइस था थोड़ा सा ज्यादा एमएसपी से नीचे बिका, लेकिन आज जो देखिएगा, ये खरीफ और रबी सीजन गया है, इसमें जो एमएसपी से नीचे बिक भी रहा है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो 30% तक शुरुआत में थी, क्योंकि मार्केट प्राइस को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन आज मार्केट प्राइस भी एडजस्ट हो चुका है, फार्मर को बेटर प्राइस मिला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ कुछ चीजों में एमएसपी नहीं मिल रहा है, ज्यादातर इस साल की बात करूं तो कई सारे फसल में एमएसपी से ऊपर मिला है। और मस्टर्ड का देख लीजिए, अभी मस्टर्ड का सीजन है, एमएसपी से ऊपर है। चना का देख लीजिए, चना ऊपर है। व्हीट का तो सरकार खुद ही 40-45% प्रोक्योरमेंट कर रही है एमएसपी पे, तो मार्केट प्राइस हमेशा ऊपर रहता है। इस साल कुछ कुछ स्टेट में थोड़ा थोड़ा, मतलब 50-100 रुपये नीचे बिकने की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आज वहां पे भी ऊपर आ गया है प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लगभग सारे जो रवि क्रॉप्स है वो एमएसपी से ऊपर है या एमएसपी के बराबर के पोजीशन में है।
1: तो एक फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को?
2: बिल्कुल, बढ़ोतरी हुई है, काफी अच्छी बढ़ोतरी, क्योंकि 50% जब A2+FL के आधार पे दिए हैं वो एक बहुत बड़ा कदम था उस समय की देखा जाएगा तो। और उसके अलावा जो मैं गिनाऊंगा तो इन्होंने फसल बीमा योजना शुरू की है, इन्होंने अभी 2 साल पहले एडिबल ऑयल मिशन लॉन्च किया, पल्सेस मिशन लॉन्च किए, और बहुत सारे चीजें इन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की है। एक रिफॉर्म जरूर है कि इन्होंने कोशिश किए थे, जो थी 3 फार्म लॉज लेके आए थे कृषि कानून, जो कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी फार्मर को साथ लेते हुए, ऐसा नहीं है कि हम ले आए तो उसको करना है, फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, नहीं माने तो फार्मर जबरदस्ती थोप नहीं दिया। जो भी चीजें हैं फार्मर जो चीज यस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली

0: सक्सेस तभी होगा जब आप फार्मर को साथ लेके चलेंगे,
1: जी
0: कोई भी स्कीम हो।
2: मिस्टर विनोद आनंद, कमिंग टू यू, आप जिस कमेटी के मेंबर हैं सरकार की, उसमें एमएसपी पर फैसले होते हैं, उस पर बातचीत होती है, थोड़ा आप हमें बता सकते हैं कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो टूल है सरकार के पास, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो किया गया है और इन 12 वर्षों में किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है किसानों को एमएसपी के माध्यम से, और बाकी भी जो आर्थिक सशक्तिकरण के जो पहलू है उन पर भी हम आपका विचार चाहेंगे।
3: जी देखिए, 3.5 गुना वृद्धि हुई है टोटल एमएसपी वैल्यू में। अर्थात मेरे कहने का अर्थ यह है कि जहां 2004 से 14 तक 7.4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, 2014-26 तक वो 26.3 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि 10 वर्षों में जो 2014 के पहले जहां 7.4 लाख करोड़ हुए थे, वो 26.3 यानी कि लगभग 3.5 गुना जो है वो खर्च सरकार ने एमएसपी के ऊपर किया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये खर्च हुआ कहां, किस तरफ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्वस्थ नेशन बने, न्यूट्रिएंट हमारा अच्छा हो, एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उसको हम मीट कर पाए। इसलिए जैसे मैं आप मोटा अनाज जो है, जैसे ज्वार है और बाजरा है, आपको जान के आश्चर्य होगा 163% यानी 163% 1530 रुपए जो ज्वार की एमएसपी थी, अब वो 4023 रुपए हो गई। ये दुनिया के किसी भी कोने में इस प्रकार से वृद्धि नहीं हुई है। सोयाबीन के ऊपर भी 123%, मतलब आप जिसमें भी देखेंगे अमूनन 5 से 10 फसलें ऐसी है जो खरीफ के मार्केटिंग सीजन में, जिसमें 100% से भी ज्यादा खर्च हुआ है, 100% ज्यादा वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि अपने आप में दर्शाती है कि एमएसपी को लेकर के और किसानों को समर्थन देने में और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं कहीं पे 179% बढ़ाया गया, जिससे वो उन फसलों के प्रति जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, किसानों के लिए जो सबसे बड़ा इंफ्रा होता है वो उनकी क्रेडिट की व्यवस्था होती है
1: जी।
3: क्रेडिट की व्यवस्था में केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट्स थे वो 6.4 करोड़ थे, लगभग 6.5 करोड़ के आसपास किसानों के पास केसीसी अकाउंट थे। आज की तारीख में ये 10.2 लाख करोड़ है, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया, लगभग 90% इसमें इजाफा हुआ है। तो ये अपने आप में कल्टीवेशन एक्सपेंसेस में, खास करके पोस्ट हार्वेस्ट रिक्वायरमेंट और मार्केटिंग में, इसमें अमूलचूल परिवर्तन हुई है। और जहां तक कृषि की बजट की बात है कि जितना बजट पहले हुआ करता था उतना तो आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को डीबीटी कर देते हैं, हमारे पास डीबीटी का बजट ही 70,000 करोड़ रुपए का है। तो कृषि में जो ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इससे दर्शाता है कि ये सरकार पूरी की पूरी विलेज लेड और फार्मर सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए ही बनी थी और इसी आधार पे ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हुए, खास करके कोऑपरेशन मिनिस्ट्री को बनने के बाद और उसमें जो पंचायतों में 2.5 लाख वेयर हाउसेज बनाने की बात, आज तक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में वेयर हाउसिंग में कहीं भी किसी भी समय में भी कभी नहीं हुआ जितना अभी हो रहा है। तो सारे पैक्सों को वेयर हाउस में कन्वर्ट करना और वेयर हाउस वो नीली छत और पीली दीवार वाले नहीं हो करके स्मार्ट वेयर हाउसेस कैसे हो जो ब्लॉकचेन से लिंक्ड हैं, एवरी ग्रेन इज ट्रेसेबल, ऐसा सिस्टम बनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के जो ऑब्जेक्टिव थे वो तो पूरे के पूरे हो रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल रिजिलियंस एग्रीकल्चर के लिए और खास करके जो मार्केट एक्सेस जो पहले नहीं था, एमएसपी को कैसे ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाई जाए, इसके लिए 26 लोगों की कमेटी बनाई गई जिसका मैं भी सदस्य हूं, जो 5 इसमें सचिव महोदय भी इसके सदस्य हैं। तो इतनी बड़ी कमेटी के द्वारा जो कुछ भी रिकमेंडेशन पिछले 4 वर्षों से जा रहा है उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है और आप अमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि किस प्रकार से न सिर्फ केसीसी अकाउंट और प्रोक्यूरमेंट में और एमएसपी में एक गुणोत्तर वृद्धि में, बल्कि जो सबसे ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल रही है वो डीबीटी हो या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, इन सब एक आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है और खास करके हम बड़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा किसान सिर्फ बीज बोना और उगाना नहीं जानता था
1: जी।
3: बल्कि वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर की जो पूरी एक वैल्यू चेन थी, उस पूरे मूल्य श्रृंखला में किसान किस प्रकार से कहां खड़ा है और कैसे वो किसान उसका हिस्सेदार हो, प्रत्येक मूल्य श्रृंखला के हर भाग में ऐसी नीति बनाई जा रही है और उसको एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है।
2: सो मिस्टर प्रसाद, जैसा कि मिस्टर प्रधान ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि जो एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन है उसके हर कदम पर जो सरकार है वो समर्थन प्रोवाइड कर रही है, एक कोलैबोरेटिव वे में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सशक्त किया जा रहा है, डीबीटी की उन्होंने बात की, ये दुनिया का सबसे ज्यादा

0: बड़ा डीबीटी इनिशिएटिव यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनिशिएटिव माना जा रहा है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो शुरुआत होती है जब एक क्रॉप साइकिल की, क्या इसका महत्व है किसानों के लिए और जिस लेवल पर इसका जो यूज हो रहा है, 9.44 करोड़ फैमिलीज से ज्यादा बेनिफिट करे हैं इसमें और 4.2 लाख करोड़ रुपीज से ज्यादा डिसबर्स किए जा चुके हैं 22 इंस्टॉलमेंट्स में, इसका जमीनी तौर पर जो किसान है उनके लिए क्या महत्व है?
1: सुनो जी, हम सब जानते हैं कि भारत में किसान जब भी परेशान रहे हैं और उनकी दिक्कतें बड़ी हैं, तो एक चीज जो सरकार के अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि खर्चा सिर्फ किसान और कृषि के काम के लिए नहीं, उनके घर के खर्चे के लिए भी काफी कुछ उनके समस्याएं आती है। तो वो पारंपरिक जो तरीके है गैर पारंपरिक तरीके से वो क्रेडिट पाते थे, यानी कि पैसा लेते थे ब्याज पे, तो काफी परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती थी। तो छोटा सा इसके लिए एक मदद के लिए कि जैसे आपने साल में 6,000 मिलते हैं, 2,000 के डीबीटी यानी कि सीधा पैसा का हस्तांतरण बैंक अकाउंट में होता है, तो इसमें सबसे बड़ा है कि छोटे खर्चे के लिए किसान को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसके खाते में पैसे हैं, अपने रोजमर्रा जिंदगी में छोटी मोटी जो उनके खर्चे हैं वो निकल जाते हैं, तो एक उनको तसल्ली होती है, हर आदमी को मतलब एक सुरक्षा महसूस होता है कि भाई हाँ मेरे खाते में पैसे हैं, कभी जरूरत हो तो मैं उसको। और जैसे आंकड़े आपने बताए हैं, जिस तरह से 2026 तक जब भी बात हुई है तो 9.44 करोड़ किसान परिवार को मिला और इसमें 25% से ज्यादा महिलाओं को सीधा साथ इसका बेनिफिट मिल रहा है इसका, तो ये एक जिसे कहते हैं छोटा कदम है लेकिन महत्वपूर्ण कदम है।
0: और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये सभी जो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है पूरे जो एक साइकिल होती है एग्रीकल्चरल साइकिल। अगर आपको कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो पहले ये था कि आपको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था जो बहुत ही डिफिकल्ट टर्म्स पे आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देते थे और ये सब जानते हैं कि किस तरह से वो उसके चंगुल में फंस जाते थे। तो ये जो सारी सुविधाएं प्राप्त हुई, आपको लगता है ये एक तरह से फ्रीडम प्राप्त हुई है फार्मर्स को और उनके सशक्तिकरण के लिए, चाहे वो फसल बीमा योजना हो जिसमें इवन वाइल्ड एनिमल्स अगर आपकी क्रॉप को खराब करते हैं तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिलता है? ये सभी बहुत छोटे दिखने वाले लेकिन अगर हम इनको मिलाकर देखें तो बहुत बड़े कदम है आर्थिक सशक्तिकरण के लिए।
1: जी सुनिए, सबसे बड़ी बात है ये दिखाता है सरकार कितना संवेदनशील है कि अलग अलग जो समस्याएं किसानों को आती हैं उस पर ध्यान उनका गया ही नहीं, उसके निवारण के लिए अलग अलग काम किए। जैसे आपने कहा पशुओं का, खासकर जो जंगली जानवर हैं वो खेत में घुस के खड़ी फसल को खराब कर देते, तो अब उसमें किसान की तो कोई गलती नहीं है, बाड़ लगाया भी होगा लेकिन रात भर निगरानी भी रखी होंगी, लेकिन कभी ना कभी कुछ इस तरह की आकस्मिक कोई घटना घटती है या जैसे हम जानते हैं कि बेमौसम बरसात आए या बेमौसम आंधी तूफान आए तो उनको नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली के आसपास जो बारिश हुई है उसमें कई खड़ी फसल में नुकसान हुआ है, तो ऐसे में किसान बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये काफी सारा व्यापक है और इसमें सरकार की जो इसके पीछे सोच है वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, यानी कि एक ही जैसा आप बीमा कंपनी को अपना प्रीमियम राशि जमा करें और उसके बदले में आकस्मिक कोई घटना घटती है आपका जो बीमा कंपनी है उनकी तरफ से आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो आंकड़े बताते हैं कि 2016-17 से हुए तो करीब 93 करोड़ या 92.5 करोड़ कृषक इस तरह के और करीब 2 लाख करोड़ रुपए तक लोगों ने 25 दिसंबर तक इसमें फायदा उठाया है। सोनू जी
0: जी बिल्कुल, एंड मिस्टर आनंद कमिंग टू यू, यू नो द काइंड ऑफ एक्सपेंशन 2.5 times इंक्रीज इन द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड्स व्हिच हैज टेकन प्लेस, इज इट नॉट ओनली द क्वांटिटी द क्वालिटी आल्सो, द फिशरीज द एलाइड सेक्टर्स दे हैव आल्सो बीन इंक्लूडेड एंड इनफैक्ट फॉर द एलाइड सेक्टर्स दिस गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ स्पेशल मिनिस्ट्री एंड देयर इज अ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सो यू थिंक दैट एनहांसिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स दीज एलाइड सेक्टर्स आर प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल?
2: देखिए, जो फूड प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ और फूड सिक्योरिटी, इसके बीच में जो कुछ भी समस्याएं होती थी और उसका कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री से बहुत लेना देना था, तो सबसे पहले सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे। मैं फिर से बताता हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव नहीं है
0: जी।
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। ये शब्द स्वयं बहुत कुछ बयां करती है सरकार की नीयत के बारे में। नीतियां तो बाद में बनती है और एग्जीक्यूट होती है। तो सरकार की नीति बहुत क्लियर है कि हम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाएंगे और सारे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स उसके तहत लेके आएंगे जो किसानों के भले के लिए हो। तो सबसे पहले कि कोऑपरेटिव का डेटाबेस आज तक हमारे पास नहीं था कि कितने पैक्स हैं, कहाँ हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनको बहुत कुछ अच्छा करना।

0: है कि उनको हम बहुत लिक्विडेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला काम तो ये किया गया कि ये अपेक्स टू पैक्स का अप्रोच कोऑपरेशन में नहीं रहा, ये
1: सो
0: पैक्स
1: पैक्स जो
0: से
1: आप कह रहे हैं कि
0: अपेक्स का
1: प्राइमरी
0: अप्रोच,
1: एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी,
0: क्रेडिट सोसाइटीज। जी
1: जी
0: बिल्कुल, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से ऊपर हम लेके जा रहे हैं अपेक्स तक, जो एनसीडीसी और नाफेड और जो आप बड़े बड़े जो कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट हैं उसकी तरफ। 25 बिजनेस एक्टिविटीज पैक्स अपने आप में कैसे रिसोर्सेज जनरेट कर पाए, जो इनपुट का बिजनेस है उसमें कैसे भागीदारी ले पाए, इसके लिए उनको 25 बिजनेस एक्टिविटीज से उनको जोड़ा गया। यहां तक कि आपको पेट्रोल पंप, एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जन औषधि केंद्र, इस प्रकार से जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेज हैं वो भी कोऑपरेटिव को पैक्स को दिए गए। 79,630 यानी कि लगभग 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया गया 31 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में। 61,886 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया ईआरपी के माध्यम से, यानी कि हर समय शाम के 5 बजे तक एक क्लिक में अब ये कंप्यूटराइज हो गई है। ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आप एक क्लिक में वहां पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ की जा सकती है। वो रजिस्टर पे एंट्री सारी बंद हो चुकी है जिसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो कहां 1947 से हम बातचीत तो कर रहे थे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जो ट्रांसपेरेंसी लानी थी, उससे हम कहीं दूर, बहुत दूर बैठे थे। तो
1: जी
0: एक तो ये सबसे पहला सुधार किया गया। आपके माध्यम से मैं कुछ और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहले ये कहा गया था कि पीडीएस में बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, सभी लोग 15% और 100% की बातचीत कहते हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था। हमारे यहाँ अब है वन नेशन वन राशन कार्ड, और वो भी डिजिटाइज्ड है। यानी कि अगर मैं बिहार का किसान हूं और दिल्ली में किसी कारणवश रह रहा हूं, तो मैं दिल्ली के फेयर प्राइस से अपना अनाज जो भी एलोकेट है मैं विड्रॉ कर सकता हूं। तो ऐसा डेटाबेस करना, ऐसा बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब मैं आता हूं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेंथन किए गए, वो फार्म गेट से मार्केट तक कैसे जाए,
1: जी
0: यानी कि किसान के खेत से बाजार तक वो जो जाने वाली बात है उसमें किसान का भाग कैसे हो, उसमें बीच में जो व्यापारी वर्ग है सिर्फ वही फायदा ना ले जाएं, बल्कि व्यापारियों के साथ हमारे किसान कैसे काम कर सके और मूल्य श्रृंखला में कैसे अपनी बात कह पाए। तो जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ई नाम की बात मैंने आपसे पहले बताई थी, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो पहले नहीं थी, आज की तारीख में 1.8 लाख ऐसे केंद्र बनाए गए जहां पे इनपुट और वन स्टॉप सेंटर हैं इनपुट और एडवाइजरी सर्विसेज के। तो एक्सटेंशन के लिए एक नया, एक पूरा ओपन मार्केट सिस्टम बन गया जहां से ये सारी चीजें हो रही है। मेगा फूड पार्क स्कीम जहां किताबों में थी, सिर्फ गाइडलाइंस में थी, आज सैकड़ों मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके और इस पूरे पूरे मूल्य श्रृंखला में किस प्रकार से किसानों के पास आप आ पाए, लगभग 11,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए, और वो
1: जी
0: फार्मर्स के माध्यम से खर्च किए गए, ना कि बीच में जो लोग होते हैं उनके माध्यम से खर्च किया जाए।
1: तो उनकी
0: आप कुछ
1: जरूरत के
0: ऐसे
1: अनुसार
0: चैलेंजिंग प्लेसेज हैं जहां पे, जैसे मान के चलिए 100 जिले थे, तो उन 100 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे क्या कारण है। भाई 75 साल हो गए जहां एक जिले में प्रोडक्शन एक्स हो रहा है, इन जिलों में x/8 हो रहा है, आखिर क्या कारण है। तो उनको लेकर के और उन जिलों के लिए अलग से स्कीमें बनाई गई, उसके ऊपर सरकार की अलग ओवरसाइट है, एडिशनल सिक्योरिटी रैंक ऑफिसर उसकी मंथली देखरेख करते हैं, और उन अमुक जिलों में कैसे प्रोडक्शन बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक पूरी नायाब नीति बनाई जा रही है। तो मुझे लगता है ये सारा जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जा रहा है, और इस प्रकार से जो प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है एलाइड एक्टिविटीज पे, खास करके फिशरीज में, और जो डेयरी में आज आप देख रहे हैं, लद्दाख में भी एनडीडीबी ने जाकर के वहां का भी एक डेयरी शुरू किया है, जिस प्रकार से दिल्ली में मदर डेयरी है, तो लद्दाख की मदर डेयरी कैसे शुरू हो, या जम्मू कश्मीर में डेयरी से फार्मर्स कैसे जुड़े, या वहां के जो लोकल जो हमारा ह्यूमन रेजिलियंस है उसको कैसे हम इंटीग्रेट कर पाए एग्रीकल्चर के साथ में। तो एक बड़ा बदलाव लाइव स्टॉक डेयरी के सेक्टर में हो रहा है।
1: जी
0: चौथी बात मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि जो बायो इथेनॉल में और जो सीबीजी में सरकार का ध्यान है, कंप्रेस बायोगैस में,
1: जी
0: और ये कंप्रेस बायोगैस का बड़ा बाजार जो पूरी दुनिया में निकल रहा था एविएशन टरबाइन फ्यूल, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन टरबाइन फ्यूल के माध्यम से, उसमें गांव की हिस्सेदारी कैसे बढ़े, उसके लिए सैकड़ों सीबीजी प्लांट लगाए जा रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं, और
1: जी
0: ये तेल की कंपनियां उसको खरीद करके और एविएशन टरबाइन फ्यूल में मिला करके और उसको वो बेच रही हैं। तो ये इसका सीधा सीधा डिविडेंड जो है वो फार्मर्स के पास जा रहा है। तो इन सारी स्कीमों में फार्मर सेंट्रिसिटी की बात यह है कि अगर मान के चलिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव व्यापार करती है, तो उसका प्राइस तो किसानों को मिलता है क्योंकि रॉ मेटेरियल उनसे वो प्रोक्योर कर रहे हैं, इसके साथ साथ में जो फायदा होता है उसका उसका डिविडेंड किसानों के पास कैसे जाए।
1: जी
0: ये फार्मर सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम जो डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बनाए।

0: जा रही है। तो ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। पिछले 12 वर्षों में हम जहां तक चल के आ पाए, हमें ऐसा लगता है कि 2047 तक एग्रीकल्चर के वैल्यू चेन में फार्मर्स की जो भागीदारी बढ़ेगी और उससे एक असमानता कमेगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी का ध्यान है और पूरा देश उस ओर अग्रसर है।
1: मिस्टर मिश्रा, आपके पास आते हैं, आप बताएं हमें, एक जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 2021 में बनाई गई, अलग से एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, और जिस तरह से कोऑपरेशन जो मॉडल है उसका सक्सेस कृषि क्षेत्र में देखा गया है, अगर हम दूध जो सेक्टर है उसकी बात करें, और ये जो फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है 10,000, ये कैसे कोऑपरेटिव मॉडल को यूज करके ये कैसे फार्मर्स को लाभान्वित करती है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, इस मंत्रालय के महत्व के बारे में कृषि क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो बनाई गई हैं, ये खासकर छोटे और सीमांत किसान हैं, उनके लिए इनका क्या महत्व है?
2: ये जो एफपीओ का कंसेप्ट लेके आए, पहले भी एफपीओ बनते थे लेकिन सरकार ने जब अनाउंस किया कि 10,000 हम एफपीओ बनाएंगे विद इन ए डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले ही बन गए
1: जी
2: 10,000। उन्होंने बनवाए क्या, उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उन्होंने स्कीम लेके आए कि हम आपको 50% इक्विटी पार्टिसिपेशन देंगे। कोई भी कंपनी, वो जो एफपीओ है उसमें या तो आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं या एक प्राइवेट कंपनी बना के आप एफपीओ का जो स्ट्रक्चर है उसके तहत आप काम कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, किसी भी कंपनी में जब 50% इक्विटी कोई देता है, उसका वोटिंग राइट होता है, वो डिसीजन लेता है, वहाँ पे उस क्षमता में रहता है, डिसीजन वही डिसाइड करे। लेकिन इस मॉडल में सरकार ने बोला कि हम इक्विटी जरूर देंगे आपको 50% ग्रांट के तहत, लेकिन डिसीजन आपकी होगी, कोई हमारा इंटरफियरेंस नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो बोलते हैं कि स्वयं शासित कर देना, कि आप खुद ही गवर्न करो एफपीओ को और गाइड करते रहना कि भाई आप ऐसे करोगे, उसमें हेल्प करना। हर बृहस्पतिवार को एक वेबिनार होती है जिसमें सारे एफपीओ जोड़ते हैं और दो दो कंपनीज को बुलाते हैं गवर्नमेंट, और ये कई चीज जो लाइमलाइट में नहीं आती है उसमें, लेकिन एफपीओ का जरूर फायदा हुआ है। कई एफपीओ करोड़पति बन गए हैं और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक शायद 10,000 में से 5,000 को करोड़पति में ले आएंगे।
1: तो किस तरह के निर्णय लेते हैं मिलकर जो एफपीओज होते हैं, किस किस क्षेत्र में?
2: इन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है एफपीओ को, जो चाहे वो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस एंटिटी उनको बिजनेस बढ़ाना है, और कृषि के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने इनपुट बेच रहा है तो वो डायरेक्टली कंपनी से सोर्स करते हैं और अपने फार्मर के अलावा जो आसपास के लोग हैं उनको देते हैं, सब्सिडाइज नहीं, चीपर रेट पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सोर्स करते हैं। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है। किसी एफपीओ को मान लीजिए पता नहीं है कहाँ से सोर्स करना है, क्या सोर्स करना है, उसमें गवर्नमेंट उनको मदद करता है, बताता है कि इस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे कई एफपीओ को बहुत फायदा हुआ है।
1: तो इनपुट्स उनकी कॉस्ट कम होती है और उनको जो प्राइसेस है वो बेटर मिलती है और उनका जो है प्रॉफिट बढ़ता है।
2: बिल्कुल, जो बीच में जितने भी मिडिल मैन इन्वॉल्व होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो वो जो भी कंपनी जो उनको कॉस्ट में देती है, सप्लाई करती है, वो थोड़ा सा मुनाफा करके प्रॉफिट रख के वो बेचते हैं।
1: जी
2: और अपने फार्मर को, कई एफपीओ तो ऐसे हैं जो कॉस्ट ऑफ जितने लाते हैं उतने में अपने मेंबर को दे देते हैं, तो जो कहीं नहीं मिलेगा उस प्राइस में। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है किसी फार्मर का, तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ता है जब मार्केट प्राइस दूसरे फार्मर के कंपैरिजन में।
1: सो दैट कलेक्टिव पावर इज देयर। एंड मिस्टर मिश्रा, वी वुड ऑल्सो लाइक योर व्यूज एंड इफ यू कुड टेल अस दैट हाउ गवर्नमेंट इज रियली एम्पावरिंग द फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट, द फर्टिलाइजर्स। सो दिस एस्पेक्ट हाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ एट द पॉलिसी लेवल इन दीज 12 ईयर्स, कैन यू टेल अस अबाउट दिस एम्पावरमेंट एस्पेक्ट फॉर फार्मर्स?
2: सी, फर्टिलाइजर इन इंडिया इज कंसिडर्ड द चीपेस्ट इन द वर्ल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट यूरिया पर्टिकुलरली। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट रेज्ड द प्राइस फॉर पास्ट 2 decades और सो, एंड यूरिया करेंटली इज अवेलेबल एट 267 rupees पर बैग ऑफ 45 kg। लास्ट इंटरनेशनल प्राइस एट व्हिच इंडिया बॉट यूरिया वाज $954 पर टन। सो रफली इफ यू टेक

एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मन मीत और मैं हूं आपके साथ रितिका।

नहीं नहीं बिल्कुल, हमें आपसे बहुत प्यार है, लेकिन अब मैं आप सभी से विदा लूंगी क्योंकि भई जयती आ चुकी है स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के

0: विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और निशिगंधा में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंधी, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

दबे पांव आए दबे पांव गए, दबे पांव आए दबे पांव गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर कितने निशा साथ छोड़ गए, मेरी जिंदगी के फर्श पर कितने निशा साथ छोड़ गए, दबे पांव आए दबे पांव गए। अगला गीत फिल्म का नाम है आए दिन बहार के, आवाज है लता मंगेशकर की।

बिल्कुल, आवाज की पहचान तभी कायम रह सकती है जब वो आवाज सुनने वाले को याद रहे। आपने कभी सोचा है कि हम कितनी जल्दी कितनी सारी बातें ऐसी भूल जाते हैं जो हमें सहेज कर समेट कर शायद याद रखनी चाहिए थी, यादों का एक पिटारा बनाकर। और हम याद क्या रखते हैं? हम याद रखते हैं वो शिकायतें जिसने हमारी जिंदगी में कभी थोड़ी भी कड़वाहट घोल दी थी। हम उन सारी कड़वी बातों को याद करके और जिंदगी में चलते रहते हैं, पर हम वो आवाजें, वो मिठास, वो सारी बातें भूल जाते हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। ऐसी और भी बातें करेंगे, फिलहाल सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है चरस, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है जानवर और आवाज है मोहम्मद रफी की।

पहले हम बात कर रहे थे कि हमें कितनी सारी बातें ऐसी याद रखते हैं हम, जो कि हमें याद नहीं रखनी चाहिए, और हम उन बातों को भूल जाते हैं जो हमारी जिंदगी में मिठास को लेकर आते हैं। अब बात यह है जनाब कि ये जो बातें होती हैं जिन्हें हम सहेज कर अपने दिल में समेट कर शिकवे शिकायतों की बड़ी सी पोटली बनाकर इसलिए रखते हैं ताकि वक्त आने पर हम उन्हें वापस कर सकें जिन्होंने हमें ये शिकायतों की पोटली दी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो हमारी जिंदगी के अलग अलग रंगों को लेकर आते हैं, हमारी जिंदगी में अलग अलग रंगों को भरकर जिंदगी को सतरंगी आभा देते हैं। अब सोचिए कि कोई अगर नाराज हो गया, नाराजगी में किसी ने ऐसी बातें कही जो आपके दिल को लग गई, पर कभी ऐसी बातें भी तो होंगी जो बातें मीठी होंगी, अच्छी होंगी। हम बातों को उन बातों को लेकर साथ चलते हैं जो बातें हमारी जबान को कड़वा कर देती हैं। पर क्या कहते हैं ना कि वक्त रहते अगर हमने इस कड़वाहट को दूर नहीं की तो समय के साथ साथ हम अकेले होते चले जाते हैं, और फिर हम खुद से शिकायत करने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम अकेले हो गए। जनाब, ये अकेलापन हम अपनी जिंदगी में अपनी चॉइस से लेकर आते हैं, क्योंकि हमने शिकायतों को दूर करना सीखा ही नहीं। हम तो अहम की उस लड़ाई का हिस्सा बन गए जो रिश्तों में आनी ही नहीं चाहिए। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आरजू, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी जवाब कम निकले। वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिलों के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज नर्म निकले। कहां तक उन पर रखें बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है सागर। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है किशोर कुमार की और फिल्म का नाम है सफर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीबी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की एक खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में आज जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और आशा भोसले की, और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और गीत सुहाने में आप जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और गीत सुहाने में आज आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार का मौसम, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि मैं तो था मौजूद, मैं तो था मौजूद किताब के लफ्जों में, मैं तो था मौजूद किताब के लफ्जों में, वो ही शायद मुझको पढ़ना भूल गया, वो ही शायद मुझको पढ़ना भूल गया। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है SP बाला सुब्रमण्यम की और आशा भोसले की।

अरे वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
0: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंधी, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

किसी ने हाथ क्या थामा, किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। मैं पोर पोर में ठहरा था एक नाम बनकर, मैं पोर पोर में ठहरा था एक नाम बनकर, वही मेरी रगों में फिर ख्याल होने लगा, वही मेरी रगों में फिर ख्याल होने लगा। किसी ने हाथ क्या थामा, कमाल होने लगा, लकीरों से परे भी कुछ सवाल होने लगा। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आए दिन बहार के, आवाज है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की।

आपको पता है कि प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है? प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि प्रेम को किसी लंबे चौड़े पत्र, बहुत भारी भरकम शब्द या फिर किसी व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम इतना खूबसूरत है, इतने सुंदर एहसासों वाला है कि बस छोटे से शब्द में समाकर अपनी पूरी कहानी कह देता है, छोटे से जगह में अपने स्थान बना लेता है। प्रेम के साथ सबसे खूबसूरत बात यही है। प्रेम व्यक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी तैयारियां करें और फिर प्रेम को जताएं। प्रेम एहसासों के सफर

सफर को तय करके दिल तक पहुंचता है और दिल में एक नमी सी पैदा कर देता है। और वो एहसास आखिर आते कहां से हैं? उन एहसासों के लिए किसी ने कहा कि दो लफ्ज में हजारों रंज पोछ डाले, दो लफ्ज में हजारों रंज पोछ डाले, बेवक्त उसने पूछकर कि कैसे हो, बेवक्त उसने पूछकर कि कैसे हो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्यार का कर्ज, आवाज है सुदेश भोसले और अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का, तो फिर मिलने के वादे के साथ जयती चाहे ये अनुमति पर चलते चलते याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर अर्चित होंगे आपके साथ। मैं छोड़ जाती हूँ आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफ़ी जी ने, कभी रात दिन हम दूर थे।

कभी रात दिन हम दूर थे। इस नींद से क्या शिकवा, इस नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर। कुसूर तो उन सपनों का है जो सोने नहीं देते। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

वजह पूछने का मौका ही नहीं मिला, वजह पूछने का मौका ही नहीं मिला। वो लहजा बदलते गए और हम धीरे धीरे अजनबी होते चले गए। 3:25 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब। 3:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अलचित के साथ।

लता मंगेशकर जी और मुकेश जी की आवाज में हम तो तेरे आशिक हैं। खता उनकी भी नहीं थी, खता उनकी भी नहीं थी, वो क्या ही करते। बहुत चाहने वाले थे, वो किस किस से वफा करते। 3:37 हो चुका है, हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:42 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मंदिरों मस्जिदों में सजदा दिन शाम सुबह शाम करते हो। मंदिरों मस्जिदों में सजदा सुबह शाम करते हो। खुदा वहाँ पे भी है साहब जहाँ तुम गुनाह करते हो। 3:47 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में आपकी खातिर। बड़ा नायाब सा रिश्ता है उनका और मेरा, बड़ा नायाब सा रिश्ता है उनका और मेरा, ना मैं शामिल हूँ उनके अपनों में, ना वो शामिल है मेरे गैरों में। 3:58 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मेक्सिको की खाड़ी में कल देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप का केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मेक्सिको और अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के कई इलाकों में महसूस किए गए। हवाना और आसपास के क्षेत्रों में इमारतें हिलने लगीं और लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि अब तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 4:11 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

फर्क बहुत है तेरी और मेरी समझ में, फर्क बहुत है तेरी और मेरी समझ में। तुमने उस्तादों से सीखा होगा, मैंने हालातों से। 4:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ हद तक याददाश्त का कमजोर होना भी कोई बुरी बात नहीं है जनाब। कुछ याददाश्त का कमजोर होना भी कोई बुरी बात नहीं है जनाब। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। 4:28 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

लता मंगेशकर जी की आवाज में आपसे मिलिए। ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रह गईं, ख्वाहिशें कुछ यूं भी अधूरी रह गईं, पहले उम्र नहीं थी और अब उम्र नहीं रह गई। 4:34 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ कार्यक्रम अरुणिमा में। आप

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तुझे देखा तुझे चाहा। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं। माफ़ करना ऐ जिंदगी, हम तुझे ठीक से नहीं जी पा रहे हैं। 4:47 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, चलो अब थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे 4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और

0: कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले भी शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी के सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जैन ने महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए भीषण आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्म पिछले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards during the defence investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan last evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. The President conferred 7 Kirti Chakra, 15 Veer Chakra and 29 Shaurya Chakra to the personnel of the Defence Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police during the ceremony. Sub-Inspector Muhammad Imtiaz, along

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 5:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ एक बहुत ही पुराना और प्यारा सा गीत।

जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। 5:17 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी।

उम्र जाया कर दी लोगों ने, औरों में नुक्स निकालते निकालते इतना खुद को तराशा होता तो खुद ही फरिश्ते बन जाते। 5:22 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

लहजा समझ में आता है मुझे हर किसी का, लहजा समझ में आता है मुझे हर किसी का, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। 5:28 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।